शुक अंसारी लड्डू गाजियाबाद से, सीमा गांधी मनोहर लाल गांधी डोंडी छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन ने। थोड़ा स्पेस कम कर देंगे तो मुझे एक ही मैसेज में इजीली से पढ़ना होगा वरना स्क्रॉल ही करती रह जाऊंगी मैं। और इसके अलावा हमें लिखा है चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल ने जमशेदपुर से। ये मैसेज हमें पहुंचा है कहां से, डोंडी लोहारा से, प्रभा जमोरिया, अनुश्री जमोरिया और पूजा डोली जमोरिया का। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेश कुमार जाटव, संदीप जाटव और कशिश जाटव का मैसेज। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार का मैसेज। राजस्थान भोपालगढ़ से सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का। शांतिनगर सोनीपत से और नरगिस खातून, मोहम्मद इसरार, ये देखिए फिर से बदल बदल के मैसेज करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है भाई। आप अलग अलग डिज़ाइन में मैसेज भेजते हैं ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं और फिर से पढ़ दूं। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, मिलाईकर छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं। दादा बाबू रोड गिरी डी झारखंड से, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, बाबू अहद चाहत का मैसेज है। और बबलू साहू, चामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव से हमें मैसेज मिला। सिद्धार्थ गुणाने, अश्नताई गुणाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने का हमें ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली का बड़वाह जिला खरगोन एमपी से मैसेज। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का मैसेज और फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण का हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी और पूरे परिवार, मोहिनी ऋतिक बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद दुल्हापुर से। और इसके अलावा सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का आशा नारंग के साथ, सैयद मसरूर के साथ हमें सहारनपुर से मैसेज पहुंचा है। और हमें लिखा है जयराम खोरवाल ने, फिर से हमारे पास मैसेज पहुंच रहा है। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है, पीड़ शहर से, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे का मैसेज। तो भाई और मैसेजेस को शामिल करने की कोशिश भी करूंगी लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करते हैं और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती, अरहान अहमद, सुफिया नवाब बलीमारान से हमें लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और दिल का मेल बॉक्स में आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी है। किस किसने हमें मैसेजेस भेजे हैं ये शामिल कर लेती हूँ और फिर अगला गीत किसकी फरमाइश है ये आप पता कर ही लेंगे। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने हमें पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लिखा। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार ने बुलंदशहर से हमें लिखा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश का मैसेज, पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर का नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज। श्रीमती रंजू बाई धाकर, युवराज सिंह धाकर, शिवांगी धाकर, जगदीश धाकर ने मध्य प्रदेश रतलाम से हमें लिखा है और विरार महाराष्ट्र से विकास वर्तक का मैसेज, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का हरियाणा झज्जर से और कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान का मैसेज हमें पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है उस्मान वोहरा, शहनाज, शिरीन और गुड्डी ने अहमदाबाद से, जी हाँ अहमदाबाद से, और हमें महाराष्ट्र से

पेश संगई, महेश संगई, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे संगई परिवार का मैसेज मिला है। साथ ही हमें मनोहर लाल गांधी ने विजय नगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिखा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज। कॉलेज रोड गरोड जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हमें हरी प्रसाद विश्वकर्मा, उषा, मानसी, वाणी का मैसेज मिला। और ये मैसेज पंकज मोहड़ का अमरावती महाराष्ट्र से। प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से। मधु किरण का भी मैसेज हमें पहुंचा है। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, बंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज हमें बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मिला है। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने प्रथम सलूजा के साथ हमें लिखा है जनकपुरी नई दिल्ली से। और ये मैसेज संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत, कमल का पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का मैसेज हमें मिला। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। शेरवानी स्कूलगंज डुंडवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी का मैसेज। और रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज कहाँ से पहुंचा है, आप इतना छोटा लिखते हैं कि मुझे नाम अलग से ढूंढने पड़ते हैं। ऋतु बत्रा, जुगल बत्रा, हर्षिता बत्रा और कृष बत्रा का गोपाल पार्क से मैसेज मिला है। पहले अपने नाम लिखिए एक के बाद एक और उसके बाद अपने शहर का नाम लिखिए, थोड़ा स्पेस दीजिए और ऊपर नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लाइन से जब आप लिखते हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रेणु गोयल, सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा धर्मवीर फिल्म से गीत सुनना चाहा है किसने, जगदीश कुमार, ऋतिक, राहुल ऋतिक नांगलोई से, राहुल और ऋतिका का नांगलोई से। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस का मैसेज। जनकपुरी, सहारनपुर से भव्या झा गाजियाबाद से हमें लिख रही हैं। और श्रोता नजफगढ़, जय विहार से शाहरुख फारूक, शबनम और शाहनाज। साथ ही महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी का मैसेज दिशा गोस्वामी के साथ नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हैं, ऐसा मत करिए दोस्त। मधुबाला तिलंगपुर कोटला से हमें लिख रही हैं। और कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जौड़ा सिटी दीवाना का मैसेज। स्वर्ण सिंह गिलका, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराश के साथ ठाकुरावाला से लोहगढ़ गांव से मैसेज पहुंचा। कैलाश चंद कोटली, कोटपुतली राजस्थान से हमें लिख रहे हैं। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का हमें व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से मैसेज पहुंचा। भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा का मैसेज। और ये मैसेज हमें लिखा है अनिल शर्मा ने सरिता विहार से। इसके अलावा हमारे पास सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचिता वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वद और सानवी का मैसेज पहुंचा है कालेगांव जाफराबाद से। हमें लिखा है कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा ने द्वारिका से जय हिंद। और हमें मिधि कपूर ने गुड़गांव से हमें मैसेज पहुंचाया है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोशिश रहेगी शामिल करती चलूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत उमा देवी जी की आवाज में। और इससे पहले जो गीत सुना था ना लता जी की आवाज, तो मैंने बता दी थी किशोरदा का नाम बोलना भूल गई थी, तो बता दूं कि उसमें किशोरदा भी शामिल थे। फिलहाल ये गीत, ये रहा उमा देवी जी की आवाज में।

आपके भी गीत हम तक पहुंच रहे हैं, जिनकी फरमाइशें आप पहुंच सुनना चाहते हैं, जो गीत आप फरमाइश हमें कर रहे हैं, आपके भी मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। पुराना धूमधारा विक्की पूना राम धूमधारा विक्की और दीपू यश का हमें रघुबीर नगर से नई दिल्ली से मैसेज पहुंचा है। एस के खन्ना ने गुरुग्राम से लिखा है और हमारे पास ये मैसेज जितेंद्र कुमार गोदावरी आशनी लकी और विशाल का फरीदाबाद से, दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से मैसेज, उत्तराखंड से विपिन नेहरा काशीपुर से काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का मैसेज, हरजिंदर शिंदा जसवीर जसी सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से हमें लिख रहे हैं, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल का हमें मैसेज पहुंचा, राजेश कुमार मनीष कुमार उमेश खयाला से हमें लिख रहे हैं विष्णु गार्डन से, सुनीता पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से मैसेज पहुंचा है, और ए के टंडन ने माया इंक्लेव हरिनगर से हमें लिखा है कि आपका प्रेजेंटेशन होमली लगता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप ऐसा ही महसूस करें। और मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मैसेज हमें पहुंचा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, हमें लिखा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा ने एसपी गोयल का हमें मैसेज पहुंचा है, नाम नहीं लिखा कहां से। और इसके अलावा हमारे पास मेराज जहां आजाद नगर गुलाब से लिख रही हैं गुलाब साबिर राही ताज मोहम्मद अंसारी के साथ, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का मैसेज, राजेंद्र जटोलिया उषा जटोलिया चारू जटोलिया कृष्णा जटोलिया के साथ दिल्ली नांगलोई से लिख रहे हैं, और हमारे पास अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का मैसेज भी पहुंचा है कहां से, मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से। और इसके बाद मैं देख रही हूँ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस, भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा तंत्रेगी से हमें लिख रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि मैं बार बार बहुत सारे नामों को शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मैसेजेस पहुँच रहे हैं। फिलहाल मैं गीत आप तक पहुँचा देती हूँ। ये गीत की फरमाइश हमें लिखी है विकास बंसोड़े रेखा बंसोड़े अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे ने, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से और हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

दोस्तों दिल का मेल बॉक्स में तो इतना ही, लेकिन फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर लेकर तस्वीर। जुड़िएगा जरूर आपकी दोस्त आर्षा रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। फिलहाल इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: कॉर्पोरेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। कांग्रेस सदस्यों, अमरीकी सीनेटर और बड़ी अमरीकी कंपनियों के अधिकारियों ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वारबर्ग पिंक्स के चेयरमैन चार्ल्स आर, प्रतिनिधि फ्रेंच हिल, प्रतिनिधि ब्रैड शर्मन, सीनेटर सिंडी हाइड स्मिथ और सिस्को के जीतू पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य तथा उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतोनियो गुतरश ने सभी पक्षों से युद्ध विराम को पूरी तरह लागू करने तथा स्थिति को और बिगड़ने से रोकने का आग्रह किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्चस्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में हुई प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप से स्वदेश वापसी के समय तबीयत खराब होने के बाद उन्हें नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल करके मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion

आपका मन कर जाए कि आप आज ही बस बैग उठाएं और पहुंच जाएं। आज जिस जगह की मैं बात करने वाली हूं, उसे जानते हैं हम तमिलनाडु के एयरकोड के नाम से। जी हाँ, तमिलनाडु का एयरकोड, ये पर्यटन स्थल जो है वो बहुत ही खास है, और अगर आप पारिवारिक छुट्टियां यहाँ पर बिताना चाहते हैं तो इसके लिए एकदम बेस्ट प्लेस है ये, जिसमें भरपूर आनंद, आराम, रोमांच और मौज मस्ती सब कुछ आपको मिलेगा। एयरकोड झील, पगोड़ा पॉइंट, गुफा, भालुकी और कोटा चोड़ू, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए जो यहाँ की अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आज की इस तस्वीर में रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ के बारे में इतना कुछ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि अगर आप यहाँ जाने का प्लान करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप यहाँ पर अच्छे से घूम सकें, आप जान सकें कि यहाँ पर क्या कुछ है देखने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए और घर लाने के लिए। बहुत सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको, लेकिन रही मेरे साथ इस सफर में जुड़े हुए। 11:12 और 40 सेकंड हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा, क्रिस्टल वॉइस। तस्वीर सुन रहे हैं आप और शुरुआत करते हैं प्यारे से गीत के साथ, रफी साहब और आशा जी और साथियों की आवाज में। ये रहा आई मिलन की बिला से खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

भाई, क्या आप 2026 की इन गर्मियों में, इन छुट्टियों में दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं? तो मैं आपको आज एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाली हूँ, और अगर आप यहाँ पर कभी गए हैं तो हो सकता है कि आपकी यादें ताज़ा हो जाएं, और अगर आप नहीं गए हैं तो आप

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: ग्यारह बजकर 20 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज हम निकले हैं तमिलनाडु के एयरकोड की यात्रा पर। तमिलनाडु का एयरकोड हिल स्टेशन अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रकृति की शांति के साथ आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक शांत और प्राकृतिक पर्यटन स्थल होने के नाते ये परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताने के लिए, मनोरंजक गतिविधियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं एयरकोड पहाड़ियों की, तो संतरे के बागानों, कॉफी, फलों और मसालों के बागानों से भरी ये भूमि शेवरॉय पहाड़ी में स्थित है। और अगर आप एयरकोड में ठहरे हैं तो आप आसपास के स्थानों जैसे सलीम, स्वामी मलाई, होसुर, इरोड, नमक्कल

और कुछ बाकी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं इस जगह की, तो यहां पर घूमने के लिए ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आपको जरूर जरूर जाना चाहिए। यरकोट हिल स्टेशन गर्मियों के मौसम में एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है, लेकिन पर्यटकों के लिए ये अभी भी एक अनछुआ प्लेस है। यहां पर अभी भी कम लोग पहुंचते हैं, इसलिए हम यहां यरकोट हिल स्टेशन और उसके आसपास घूमने के लिए आपको कुछ बेहतरीन प्लेसेस बताएंगे जिसमें आप के लिए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यरकोट झील की, तो तमिलनाडु में प्राकृतिक रूप से बनी झील यरकोट झील जो है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। हरे भरे मैदानों के बीच शानदार नजारों का आनंद आप यहां ले सकते हैं। यहां के शांत और सुखद वातावरण में आप झील किनारे स्थित कई रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, जहां पर बैठ सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। यरकोट में एक दिन में घूमने की योजना बनाते समय इस जगह को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करिएगा, क्योंकि ये जगह इस जगह पर तो है ही, यहाँ से आसानी से आप घूमने के लिए जा सकते हैं और आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये केंद्र है कहा जाए यरकोट का, तो अपने आप में आसपास की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यही वजह है कि प्रकृति प्रेमी और भोजन प्रेमी यहाँ समान तौर पर पहुंचते हैं। एक अगर मैं बात करूं तो जिन्हें खाना बहुत पसंद है, जिन्हें प्रकृति बहुत पसंद है, वो सभी लोग यहाँ पर जरूर जाते हैं। झील में आप बोटिंग कर सकते हैं और आपके कई यादगार पलों को संजो कर ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लूप रोड ट्रिप की, तो अपने आप में ये भी काफ़ी ख़ास है। 32 किलोमीटर का लूप रोड ट्रिप आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ओर बैरियर लगे हैं। यूपिन जैसे घुमावदार मोड वाली लूप रोड 32 किलोमीटर की यादगार यात्रा का अनुभव आपको देती है। और यहाँ तभी गाड़ी चलाएं जब आपको ड्राइविंग अच्छी तरह से आती हो और अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा हो। एयरकोट में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये। आसपास के इलाकों में हाइकिंग करना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव यहाँ हो सकता है। और अगर आप एयरकोट में दो दिन में घूमना चाहते हैं, रोमांच और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो ये जगह उसमें आप शामिल कर सकते हैं और उसके लिए ये प्लेस एकदम फिट बैठती है। तो अगर आपके पास एक दो दिन का समय है और आप एयरकोट घूमने जा रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो एयरकोट में पेगोड़ा पॉइंट एक प्लेस है। पेगोड़ा पॉइंट जो है वो यरकोट में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है और ये भरपूर पहाड़ियों से घिरी है और बहुत खूबसूरत जगह है। सबसे खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। यरकोट बस स्टैंड से सिर्फ करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जगह पिरामिड पॉइंट के नाम से भी यहाँ फेमस है, क्योंकि यहाँ शिंगलों के चार ढेर पिरामिड की तरह लगे हुए हैं और बेहतरीन नज़ारों के लिए यहाँ पर लोग जरूर पहुंचते हैं कुछ समय बिताने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, जरूर बताऊंगी, आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचाती हूं लता जी की आवाज में।

तो अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ, आप पगोड़ा पॉइंट जा सकते हैं और ये एयरकोर्ट से 5 मील की दूरी पर है। यहाँ कार या साइकिल से पहुँचना बहुत आसान है और इजीली आप जा सकते हैं यहाँ किसी भी तरीके से। साइकिल से अगर आप चाहते हैं तो यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का मज़ा भी ले सकते हैं। एयरकोर्ट, तलाई, चौलाई, सेलम, ये सभी आस पास है, तो इन जगहों पर आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो घूमने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो यहाँ पर पगोड़ा पॉइंट में, वो है सबसे अद्भुत नज़ारे देखने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, जब आप यहाँ पर जा सकते हैं और आपको अलग अलग खूबसूरत नज़ारे देखने का मौका मिल सकता है। शानदार नज़ारों की तस्वीर अगर आप लेना चाहें तो अपने साथ कैमरा ज़रूर रखिएगा। सुबह के समय भीड़ कम होती है और आप इस टाइम पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं और यादगार तस्वीरें अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रेशम फार्म की और गुलाब उद्यान की, तो आप यहाँ भी जाइएगा ज़रूर। ये यात्रा ज्ञान और मनोरंजन के लिए बेस्ट होगी। बगीचे में खिले रंग बिरंगे गुलाब आपको अलग अलग तरह की प्रजातियों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो गुलाब के उगने से जुड़ी होती हैं, गुलाब के पैदा होने से जुड़ी होती हैं, वो आपको पता चलेंगी। और इसी तरह आपको रेशम के कीड़ों के पालन पोषण और उनके खोल से रेशम बनाने की उपयोगिता के बारे में भी बहुत सी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। भालू की गुफा है जो आप देख सकते हैं एयरकोर्ट में, बहुत ही रोमांचक प्लेस है ये। एयरकोर्ट में आप इस जगह पर भी जा सकते हैं। नाटन बंगले के पास स्थित भालू की गुफा को भगवान गुरुगन का निवास स्थान माना जाता है और ये शेरवरोयन मंदिर के रास्ते में पड़ता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो ये जगह आपका सचमुच मन जीत लेगी। आपको एक बार यहाँ भी जरूर जाना चाहिए। कोटा चेडू सागौन वन है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत निर्मल वन है ये। यहाँ प्रकृति की गोद में शांत और लंबी सैर करना आपको सचमुच बहुत ही सुखद लगेगा और आप एयरकोर्ट के अलग अलग वन्य जीवों के नज़ारे भी, दर्शन भी कर सकेंगे। चींटी, खाने वाले जानवर, बाइसन, लोमड़ी, पैराडाइज्ड फ्लाई कैचर और इसके अलावा अवाबील पक्षी, ऐसे बहुत से पक्षी भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। चुपचाप अपने कैमरे में आप इनकी तस्वीरें यहाँ पर ले सकते हैं और अपने कलेक्शन में इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। वानियर नदी और उससे सटे बांध के पास कुछ पल आप रुक जाइए, सचमुच आपका दिन बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किलियूर वाटरफॉल की, तो क्या आपको नहीं लगता कि गर्मियों के मौसम में झरने जो हैं वो सचमुच पर्यटकों की एक मेन अट्रैक्शन होते हैं। जहाँ पर भी आपको पता चल जाए कि वाटरफॉल है, आप पहुँच जाते हैं बिना कुछ सोचे, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक किलियूर वाटरफॉल है जो कि एयरकोट झील के बहते पानी से बनता है। 300 किलियूर वाटरफॉल भी इसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है।

झरने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं और आप झरने तक जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर पैदल चल सकते हैं। सिर्फ एक दिन का अगर समय मिल जाए आपको तो फिर आप दिन के समय में समय से जाइए यहाँ पर और इस जगह का आनंद ज़रूर लीजिए। डियर पार्क है एक जगह, यहाँ भी आप जा सकते हैं, बेस्ट प्लेस है, आपको ज़रूर यहाँ घूमना चाहिए। पार्क में आज़ाद रूप से घूमते हुए हिरण, बतख और मोरों की आप संगति कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और सचमुच ये आपकी आत्मा को तरोताज़ा कर देंगे। ये पार्क यरकोट झील के किनारे पर है और इसलिए यहाँ की हरियाली जो है वो सचमुच मन को जीत लेती है। और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं यरकोट में घूमने के लिए, लेकिन गीतों के साथ साथ बढ़ेंगे आगे आगे, बस हमें साथ लिए चलते रहिए।

0: पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: साधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ब्रेक के बाद वापस तो मिलना ही होता है। आप सोचते होंगे ना कहाँ चले गए, भाई छोटा छोटा ब्रेक तो लेना बनता है ना। 11:37:41 हो चुके हैं और मैं याद दिला दूं कि आपको तमिलनाडु की एयरकोट घुमा रही हूँ आज मैं। तो भाई एयरकोट में और कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, तो बता दूं कि एयरकोट में लेडीज सीट एक जगह है और एक तरह का ये अवलोकन मंच है जहां से पूर्वी घाट की घुमावदार सड़क का नजारा दिखता है। यहां से मिटूर बांध और सलेम शहर का शानदार नजारा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ एक टावर भी है जिसमें दूरबीन लगी है ताकि आप मनमोहक नजारों का आनंद ले सकें। ये टावर पर्यटकों के लिए सिर्फ दिन के समय ही खुला रहता है, तो अगर आप यहाँ जाएं तो दिन में यहाँ जाइएगा और दूरबीन से यहाँ के आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा एयरकोट में शिवरॉय हिल्स है जो कि आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लेस हो सकता है। शिवरॉय हिल्स एयरकोट के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है और ये पहाड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और लोग यहाँ खास तौर से प्रकृति का आनंद लेने और सुकून पाने के लिए आते हैं। इस पहाड़ी इलाके में कुछ पुराने कॉटेज और होम स्टेज भी हैं, लोग वीकेंड में यहाँ दो दिन बिता सकते हैं और उनका सचमुच सफर जो है वो लाजवाब हो जाता है। अगर मैं बात करूं एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो भाई एयरकोट घूमने का सबसे अच्छा समय है मार्च से जून, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान आप यहां जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग एयरकोट में वीकेंड ट्रिप को प्लान करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के लिए एयरकोट घूमने की सलाह मैं आपको दूंगी। अगर आपको वक्त मिले तो करीब एक हफ्ते यहां रहिएगा और ये वक्त तो आपको शायद छुट्टियों में ही मिल पाएगा। ज्यादातर पर्यटन के तौर पर जो लोग यहाँ पहुँचते हैं मई महीने में एयरकोट जाना पसंद करते हैं क्योंकि इस दौरान कई गतिविधियाँ होती हैं जिनमें 7 दिनों तक चलने वाला ग्रीष्म उत्सव भी शामिल है। एयरकोट में अलग अलग मौसमों में यात्रा अगर आप करते हैं तो आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है यहाँ, जो कि छुट्टियों और मौसम के लिए सबसे बेस्ट है। मानसून की अगर बात करूं तो हरे भरे नज़ारे लेकिन फिसलन भरी सड़कें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। सर्दियों में ठंडा मौसम और कम भीड़ होती है। मई का महीना ग्रीष्म उत्सव की वजह से खास होता है, तो आप इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। पहुँचना कैसे है एयरकोट जरूर बताऊंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए इस गीत के बाद।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: चलिए अब आपको बता देती हूँ कि एयरकोट पहुंचना कैसे है। एयरकोट के सबसे नजदीक स्टेशन दानिशपेट रेलवे स्टेशन है। हालांकि एयरकोट से 22 किलोमीटर दूर स्थित तो मुख्य टर्मिनस सलेम रेलवे स्टेशन है। सलेम हवाई अड्डा एयरकोट से 38 किलोमीटर की दूरी पर है और इसलिए ये पड़ोसी हवाई अड्डा भी है। आप तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऑप्शन भी चुन सकते हैं जो एयरकोट से 168 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरकोट के अधिकांश पड़ोसी कस्बों और शहरों से बसें उपलब्ध हैं। अगर आप 32 किलोमीटर के लूप रोड पर खुद ड्राइव करने की इच्छा रखते हैं तो ये मजेदार अनुभव भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें यहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, एक और जगह के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, कनादी और व्यू पॉइंट है जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। पेगोड़ा पॉइंट की तुलना में कम भीड़भाड़ वाला शांत सूर्यास्त के लिए बेस्ट है ये प्लेस, आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यात्रियों के लिए अगर मैं बात करूं तो एयरकोट जो है वो भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों जैसा नहीं है। यहाँ का शांत वातावरण, ठंडी हवा और कम यातायात इसे बेहद सुकून भरा बनाते हैं। शाम को एयरकोट झील के किनारे बैठना मन को शांति देता है। पगोड़ा पॉइंट से सूर्यास्त का नजारा ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा इसे याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। सचमुच बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप शहर की व्यस्त जिंदगी से कुछ समय के लिए राहत पाना चाहते हैं तो भी ये एक बेस्ट प्लेस है। तो कुछ सामान पैक कर लीजिए और पहुंच जाइए यहाँ पर, क्योंकि आपकी यात्रा यहाँ के लिए अगर आप एक बार कर लें तो यादगार होगी। समुद्र तल से 1515 मीटर के लगभग की ऊंचाई पर स्थित 7 जंगलों की भूमि एयरकोट गर्मियों में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एयरकोट में छुट्टियां बिताने की योजना अक्टूबर से जून के बीच बनाने की सलाह मैं आपको दूंगी। वैसे ये जो मौसम है अभी, ये भी बहुत सही है यहाँ जाने के लिए। मई में 7 दिवसीय ग्रीष्म उत्सव का आयोजन होता है जिसमें फूलों की प्रदर्शनी, डॉग शो, नाव दौड़ और कई गाँव के मेले भी शामिल होते हैं। अगर आप मई के मौसम में अगली बार वक्त मिले जाना चाहें तो तब जाइएगा ज़रूर। और गर्मियों में ये एयरकोट की

पर्यटन स्थलों की यात्रा अगर आप करते हैं तो ये अनुभव भी बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, पगोड़ा पॉइंट, बोटानिकल गार्डन, कावेरी पीक, लूप रोड, बहुत सी चीज़ें हैं और कई गतिविधियाँ भी आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। और संस्कृति की अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो तमिलनाडु की शिवरॉय पहाड़ियों में बसा एयरकोड एक शांत और आकर्षक हिल स्टेशन है। इसे गरीबों का ऊटी भी कहा जाता है। एयरकोड की संस्कृति खासतौर से प्राचीन तमिल द्रविड़ संस्कृति और औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रभाव का एक अनूठा मिश्रण है। गरीबों की ऊटी मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप कम बजट में यहां पर जाना चाहते हैं तो भी आप इस जगह पर जा सकते हैं, मतलब सस्ते में बेस्ट प्लेस, और क्या चाहिए। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत सुनाती हूँ, उसके बाद यहाँ की संस्कृति से जुड़ी कुछ और बातें भी आपको जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, येरकोड जो नाम है वो तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है, येरी यानी झील और काडू यानी जंगल, जिसकी वजह से इसका शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो झील का जंगल कहा जा सकता है। ये जो जगह है सदियों से मलयाली और आदिवासी समुदाय का निवास स्थान रहा है। मलयाली आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ सदियों से रहता आया है और आज भी यहाँ के मूल निवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली, कृषि जैसे बाजरा, रागी और फल उगाना और सांस्कृतिक अनुष्ठानों को संजोए हुए हैं, संभाले हुए हैं। मई के महीने में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक उत्सव जो है यहाँ का वो है फूलों की प्रदर्शनी, जब पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प मेले यहाँ लगते हैं। त्योहारों में पोंगल, कार्तिकाई दीपम और तमिल नववर्ष बहुत उत्साह के साथ यहाँ मनाए जाते हैं। अगर बात करूँ खान पान की तो येरकोड अपनी ताजे कॉफी बागानों और संतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति में मसालों जैसे काली मिर्च

और इलायची, शहद और घर की बनी चॉकलेट का बड़ा महत्व है। और अगर मैं बात करूं तो स्कॉटिश कलेक्टर डेविड कॉक बर्न द्वारा कॉफी की खेती शुरू करने के बाद करीब 19वीं सदी में यहां ब्रिटिश शैली के बंगले, कॉटेज और चर्च बनाए गए। आज ये औपनिवेशिक विरासतें प्राचीन शेवाराय मंदिर और पगोडा पॉइंट के साथ मिलकर यहां की अनूठी वास्तुकला को दर्शाती हैं। और यरकोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ शानदार स्थानीय उत्पादों के लिए जाना जाता है। यहां आप, जैसा कि मैंने कहा, कि ऑर्गेनिक कॉफी, ताज़ा मसाले, होममेड चॉकलेट, हर्बल एसेंशियल ऑयल्स ये सब कुछ खरीद कर अपने घर लेकर आ सकते हैं। आप इन चीज़ों को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए ताकि जब भी आप यहां पर जाएं तो आपको ये सब चीज़ें खरीद कर घर लाना याद रहे। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं यरकोड में आप जो खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहां मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, सिमन की वेरल एक तरह का ड्राई चिकन होता है, स्थानीय बैम्बू चिकन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पारंपरिक शाकाहारी खाने की बात करूं तो केले के पत्ते पर पोंगल, इडली डोसा और नारियल वाली सांभर चटनी का आप आनंद ले सकते हैं। ताज़ी फिल्टर कॉफ़ी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इंडियन फिल्टर कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट का मज़ा आप ले सकते हैं। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तली हुई बटरफिश और आग पर भुना हुआ भुट्टा आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इतना सब टेस्ट करने का मौका मिले तो कहाँ रुका जाता है। मैं तो अभी उड़ चली हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी, लेकिन फिलहाल आप तक एक गीत पहुँचा देती हूँ। ये रहा एक और खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़ में।

0: तो भाई अब तस्वीर के सफर में तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी, मैं रेखा आज रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आपसे आज के लिए विदा। 11:57:53 मिलेंगे फिर किसी रोज, ये वादा रहा।
1: फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर ले।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो

0: उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: เงิน
1: कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं वही आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी की जड़ें भी हमारे बुजुर्ग ही हैं। उनके अनुभव, उनकी सीख, उनकी दुआएं और उनका स्नेह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक कदम बुजुर्गों की ओर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर हूं मैं, आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बढ़ाएंगे एक ऐसा कदम जो सम्मान का भी है, संवाद का भी और अपनत्व का भी। आइए दिल से जोड़ते हैं उन हाथों से जिन्होंने हमें चलना सिखाया और उन आंखों से जिनमें आज भी हमारे लिए ढेरों दुआ

नहीं बसी हैं। स्वागत है आपकी अपने कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों के लिए में। कहते हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और अब हम करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे सी गीत के साथ।

रुना लैला को आप सुन रहे थे फिल्म घरांदा में। और देखिए, प्यार हमें आपसे है और बेशुमार है। अब कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से जरूर हुई है, लेकिन आपका और हमारा प्यार तो इतना ज्यादा है कि उसका तो खैर कोई सानी ही नहीं है। तो आपका प्यार हम तक पहुंचता कैसे है? जी हाँ, पहुंचता है आपकी ईमेल के माध्यम से। तो हमारी ईमेल आईडी आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ आपको, वो है fmgoldga@gmail.com। तो इंतजार है आपकी बातों का, आपकी कमेंट्स का और आपकी प्रतिक्रियाओं का। दोस्तों, आज शुक्रवार है, आप सभी जानते हैं, और ये दिन है समर्पित किनको? जी हाँ, हमारे बुजुर्गों को। लेकिन ना, आज की तारीख है 12 जून और आपको पता है आज हम एक और विशेष दिवस है आज के दिन, और वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बचपन हाथों में मेहनत का बोझ नहीं, सपनों की उड़ान मांगता है ना? और इस वर्ष की जो थीम है ना, वो है रेड कार टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रेन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। यह थीम इस बात पर जोर देती है दोस्तों कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानपूर्ण बचपन मिले, और परिवारों को ऐसा सम्मानजनक रोजगार मिले कि बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो आइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और मुस्कुराने का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। कभी उम्र को केवल जीवन की संध्या माना जाता था, लेकिन आज बदलते समय के साथ ना ये धारणा भी बदल रही है। वरिष्ठ नागरिक अब केवल अनुभव के धनी ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में भी देखे जा रहे हैं। और इसी सोच से जुड़ा है एक बेहद नया शब्द, और वो है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का संबंध ना उन सेवाओं, सुविधाओं और उत्पादों से है जो विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसमें ना स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पर्यटन, डिजिटल सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, सहायक उपकरण और देखभाल से जुड़ी उनकी अनेक गतिविधियां शामिल हैं। भारत में ना वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह जो क्षेत्र है ना, यह तेजी से बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त कर रहा है। आज ना अनेक ऐसी संस्थाएं हैं और ऐसे उद्योग हैं जो ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों को और अधिक सुरक्षित, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सकें। दरअसल उम्र केवल ना वर्षों की गिनती नहीं होती, ये होती है अनुभव, ज्ञान और जीवन की समझ का खजाना। इसीलिए ना बहुत जरूरी है कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं को समान महत्व दें। अब ना जो सिल्वर इकोनॉमी है, इसी दिशा में एक बहुत पॉजिटिव पहल है, और यह जो संदेश देती है कि बढ़ती उम्र केवल देखभाल का विषय नहीं है, बल्कि अवसरों और संभावनाओं का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है ना? और जब हमारी सोच और हमारे बुजुर्गों की इच्छाएं और उनकी जरूरतें एक साथ मिल जाती हैं, तो उनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू, है ना?

फिल्म प्रेम गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में ये गीत। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव की अपनी गति और अपनी जरूरतें होती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जीवन में हर बात उपलब्धि या प्रदर्शन से नहीं बल्कि संतुलन और सहजता से भी जुड़ी होती है। शायद योग हमें भी यही सिखाता है। अक्सर योग का नाम आते ही ना कठिन आसनों की तस्वीर मन में उभरती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग का अर्थ कुछ और है। ये शरीर को उसकी क्षमता के अनुसार सक्रिय बनाए रखने, श्वास पर ध्यान देने और मन को शांत रखने का एक अभ्यास है। योग हमें ना अपने शरीर की सुनना सिखाता है। जी हाँ, ये हमें ये बताता है कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। आइए हम ये सुने। ये बताता है कि हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना जीवन भर दूसरों के लिए समय देना। बढ़ती उम्र में योग लचीलेपन की प्रतियोगिता नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शरीर और मन के साथ एक सहज संवाद का माध्यम है दोस्तों, और ना कुछ सरल अभ्यास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बना सकते हैं। आखिरकार योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं होता बल्कि स्वयं के साथ ना एक सामंजस्य स्थापित करने की एक बहुत सुंदर सी प्रक्रिया है। इसीलिए बढ़ती उम्र में योग का अर्थ लचीलापन नहीं बल्कि सहजता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा बहुत योग अपने जीवन में जरूर उसको स्थान दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारे शरीर का दर्पण है। और हमारा जो हमारी आत्मा अगर स्वस्थ होगी तो हमें अपने आप उस परमपिता के दर्शन हो जाएंगे, है ना।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये सुमधुर गीत। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नियमित श्रोता जुड़ चुके हैं और वो बहुत खूबसूरत शब्दों में हमें एक संदेश देते हैं। वो लिख रहे हैं, वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निःशब्द तुम्हारे सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे। बस क्या बात है। नमस्कार, आप हमें नमस्कार लिख रहे हैं और ये कौन है? ये हैं, जी हाँ, नवीन भाटिया जी, मोतीनगर, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हमारे साथ हर दिन बने रहने के लिए। और हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, ये हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से। लिखते हैं, सोनाली बेटा, राम राम। आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, अगर इस पर अमल करें तो जिंदगी सफल हो जाती है, लेकिन आज के समय में फ़र्क है। मैं तो यही कहूँगा, अपने साथियों को, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, उन पर कोई दबाव मत दो, तभी आपकी ज़िंदगी खुशी से गुजर जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप सभी जानते हैं हम सुन रहे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि सीखने की कोई

उम्र नहीं होती, और आज हमारे आसपास इसके कई सुंदर उदाहरण दिखाई देते हैं। एक समय था ना जब चिट्ठियों का इंतजार हुआ करता था, फिर टेलीफोन आए, और अब मोबाइल ने दुनिया को अपनी हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। आज बहुत से बुजुर्ग इस नई दुनिया के साथ कदम मिला रहे हैं। कोई वीडियो कॉल पर दूर बैठे बच्चों से बात कर रहा है, तो कोई ना मोबाइल से बिल जमा कर रहा है, तो कोई नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है, और ये बदलाव बहुत खुशी देता है ना। लेकिन हर नई राह की तरह इस राह पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। कई बार फोन संदेश या लिंक के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, OTP या बैंक से जुड़ी बातें साझा करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर कोई बात समझ में ना आए ना, तो आप बस झिझकिए मत, अपने बच्चों, परिवार या बैंक से पूछ लीजिए। देखिए, एक सवाल पूछ लेना बाद में परेशान होने से कहीं बेहतर है। नई तकनीक से डरने की नहीं, उसे दोस्ती करने की जरूरत है ना। और बस इतनी सी बात याद रखिए कि समझदारी और सावधानी दोनों साथ रहें। दुनिया बदल रही है, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बुजुर्ग भी उसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफर कभी रुकता नहीं है। और जब इस सफर में आपके साथ हम सफर हो FM गोल्ड, तो क्या बात है, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार गीत। तो आइए अब सुनते हैं एक और बहुत ही सदाबहार गीत।

फिल्म लव इन टोक्यो में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर, और आज आपके साथ मैं हूँ। जी हाँ, आपके रेडियो हम सफर सुना ली। कहते हैं घूमने फिरने का शौक उम्र नहीं देखता, बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा फुर्सत मिलने के बाद ही उन्हें घूमने का असली मौका मिलता है। नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना हर उम्र में अच्छा लगता है। हाँ, बढ़ती उम्र में सफर पर निकलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर जरूरी है ना। घर से निकलते समय अपनी दवाइयां साथ रख लें और मौसम के हिसाब से तैयारी जरूर कर लें। अगर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो घर वालों को अपनी इस यात्रा की जानकारी देकर ही जाएं। सफर के दौरान बहुत ज्यादा सामान उठाने से बचें, मोबाइल साथ जरूर रखें, और हाँ, जरूरी नंबर उसमें सेव हो तो और अच्छी बात है। अगर थकान जरा सी भी महसूस होना तो कहीं पर भी ना रुक कर थोड़ा सा आराम जरूर करें। सफर का मजा तभी है जब हम उसे आराम से जिए, है ना। मतलब भागा दौड़ी ना करें, अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें, और जहां भी थोड़ी सी भी आपको लगे कि कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वहीं रुक जाइए और थोड़ा सा सांस ले लीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। घूमना फिरना सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं है, ये तो आप मानेंगे ना। यह रोजमर्रा की दिनचर्या से ना थोड़ा बाहर निकलने, नई ऊर्जा महसूस करने और अच्छी यादें बनाने का भी एक जरिया है। इसीलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर सफर का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। बस थोड़ी तैयारी और थोड़ी सावधानी के साथ निकल पड़िए एक नई मंजिल की ओर, क्योंकि आपको क्या पता जीवन के किस मोड़ पर कौन कहां आपसे मिल रहा है।

आप सुन रहे थे फिल्म झूठा कहीं का। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की आवाज में ये गीत। हमारे साथ हमारे ना एक और दोस्त जुड़े हुए हैं, वो है सुदर्शन मुखी जी, उनके साथ है अनिता मुखी और सिमरन मुखी, और ये हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और इन्हें सारी बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई और काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या देशों में चले जाते हैं। ये आज के समय की एक सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ना इस दूरी के साथ एक खालीपन भी महसूस होने लगता है। ऐसे में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि दूरियां हमें रिश्तों को कमजोर नहीं करती। जी हाँ, दूरियां हमारे रिश्तों को कभी कमजोर नहीं करती। आज ना फोन, वीडियो कॉल और संदेशों के जरिए अपनों से जुड़े रहना पहले से कहीं आसान हो गया है, है ना। और कई बार ना दिन भर की बहुत, अगर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहते हैं, तो इसके बीच में कुछ मिनट अपने दोस्तों से या अपने लोगों से, अपने बच्चों से बातचीत करके ना दिल में एक बहुत अलग सी शांति और सुकून

0: हमें मिलता है। बढ़ती उम्र में ना दोस्तों, पड़ोसियों और अपने शौकों से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है, ये आप हमेशा याद रखिए। जीवन केवल बच्चों की इर्द गिर्द नहीं घूमता, हाँ उसमें अपने लिए भी एक जगह होनी बहुत जरूरी है। अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता है जब हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं, इसीलिए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पसंद की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए। बच्चे भले दूर हों लेकिन रिश्तों की गर्माहट दूरी से कम नहीं होती। कभी एक फोन कॉल, कभी एक मैसेज और कभी एक छोटी सी मुलाकात भी दिलों को करीब बनाए रख सकती है ना। तो बस यही आप हमेशा सोचते रहिए, देखते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए और अपनी जिंदगी में प्यार को बनाए रखिए, क्योंकि इस समय में आपका हम सफर अगर आपके साथ है तो इससे ज्यादा भली बात और कोई हो ही नहीं सकती। अपने उस जीवन साथी का साथ हमेशा निभाते रहिए, उसके साथ समय बिताइए और जीवन के इस पड़ाव को उतने ही प्यार और खूबसूरती के साथ जिए जिस तरह अपना आप पूरा जीवन जीते आए हैं।
1: हाँ? क्या कहा?

फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, इसमें आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, कभी संगीत सुनने का शौक था

कभी बागवानी का था, कभी डायरी लिखने का या कुछ नया पढ़ने का शौक था। था क्यों? है होना चाहिए ना। जी हाँ, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच ना ये शौक कहीं आपके पीछे रह गए ना। लेकिन अब तो समय है, आप इन्हें फिर से अपना सकते हैं। संगीत, मानेंगे ना, मन को सुकून देता है। बागवानी जो होती है वो हमें हमारी प्रकृति के बहुत करीब ले जाती है। और अगर आप लिखने के शौकीन हो तो क्या बात है, अपने मन की बात कहने का ये एक सुंदर जरिया बन सकता है। ऐसे शौक न केवल समय को हमारे सार्थक बनाते हैं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी भरते हैं। जरूरी नहीं कि आपका शौक बहुत बड़ा हो, कभी किसी पुराने गीत को सुन लेना। और अगर पुराने गीत सुनना है तो आपको कहाँ बने रहना है? हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो किसी पौधे की देखभाल कर लेना या फिर दिन भर के अनुभवों को कुछ पंक्तियों में लिख लेना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जीवन की खूबसूरती यही है कि सीखने और नए अनुभवों के लिए कभी देर नहीं होती। इसलिए अगर कोई पुराना शौक आज भी दिल के किसी कोने में दस्तक देता है ना, तो उसे फिर से अपनाने में संकोच कैसा। कभी कभी वही पुराने शौक जीवन में नई खुशियां लेकर आते हैं, है ना।

केरल में ममता में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम आपके साथ एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहते हैं और वो है, जी हाँ, जीवन प्रमाण यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुविधा। अब क्या हो रहा है ना कि समय के साथ बहुत से काम आसान होते जा रहे हैं और तकनीक का लाभ अब हमारे बुजुर्ग लोगों तक भी पहुंच रहा है। ऐसी एक सुविधा है जीवन प्रमाण, जो पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। अब क्या होता है, पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को हर साल ये प्रमाण देना होता है कि वे जीवित हैं, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। पहले इसके लिए बैंक या हमें संबंधित कार्यालय में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन अब ना जीवन प्रमाण की डिजिटल सुविधा ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। जीवन प्रमाण एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है जिसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इससे हमारे बुजुर्गों को बार बार बैंक या कार्यालय के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है और ये सुविधा ना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण बाहर जाने में कठिनाई होती है। तो आप जीवन प्रमाण से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ना, जी हाँ, jeevanpraman.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहाँ इस सुविधा से संबंधित बहुत सारी आपको जानकारियाँ बहुत विस्तृत रूप में मिल जाएंगी। और नई चीज़ें सीखने और अपनाने की कोई उम्र नहीं होती, हम बार बार आपसे यही कहेंगे। और जब तकनीक जीवन को सरल बनाने में मदद करे

जी हाँ, आप ही के जादू के साथ इस कार्यक्रम को हमने पूरा पूरा किया और अब देखिए घड़ी हमें इशारा नहीं करती कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो बस आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हर आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के

0: पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमरीका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। फिलहाल वक्त हो चला है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री श्यामा की। अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अदाओं वाली अभिनेत्री श्यामा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें बरसात की रात, आर पार सावन भादो और दिल दिया दर्द लिया जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा अभिनेत्री श्यामा ने। 50 और 60 के दशक में हिंदी और पंजाबी सिनेमा की बेहतरीन हीरोइनों में शुमार श्यामा की आज हम बात करेंगे कलाकार बेमिसाल के जरिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं रुचिका आपके साथ, और चलिए इस प्रोग्राम की इस घंटे की शुरुआत करते हैं फिल्म भाई भाई से इस सुपरहिट गीत के साथ। और ये चुलबुला गीत पिक्चराइज्ड है, जाहिर सी बात है, अभिनेत्री श्यामा पर। सुनते रहिए एफएम गोल्ड

जी हाँ, ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में और फिल्म थी भाई भाई। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अदाकारा श्यामा की। श्यामा का असली नाम खुर्शीद अख्तर था। निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें श्यामा नाम दिया था। श्यामा ने 45 साल की उम्र तक करीब 175 फिल्मों में काम किया। 7 जून 1935 को लाहौर में वे पैदा हुई थी। 1938 में उनका परिवार बंबई आ गया। श्यामा की उम्र करीब 10 साल की थी। आपको बता दें कि उनका जो फिल्मी करियर था वो किस तरह से शुरू हुआ था और बचपन से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी उम्र जब करीब 10 साल की थी तब उनके स्कूल के पास फिल्म जीनत की शूटिंग हुई। नूरजहां उस फिल्म की हीरोइन थी। वहां फिल्म में एक कवाली का सीन था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कलाकारों की जरूरत थी और स्कूल की वो कुछ लड़कियां फिल्म की शूटिंग देखने उस जगह पहुंच चुकी थी और फिल्म के डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी ने देखा कि सेट पर कुछ स्कूली लड़कियां मौजूद हैं, तो उन्होंने पूछ लिया कि फिल्म में तुम में से कौन काम करेगा। तो सारी लड़कियां शर्मा गई, लेकिन खुर्शीद ने बड़ी बेबाकी से कहा कि मैं फिल्मों में काम करूंगी। बस तभी से श्यामा

बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में एक्स्ट्रा और कोरस गर्ल के रूप में काम करने लगी और बेबी खुर्शीद के नाम से जाननी उन्हें पहचाना गया। और उसके बाद उन्होंने तराना, सजा, पतंगा, गृहस्थी, शायर, शबनम, नाच सहित कई बड़ी फिल्मों में एक सहायक कलाकार के तौर पर काम किया। और इस तरीके से बस उनका जो फिल्मी सफ़र था वो बचपन से ही शुरू हो गया और धीरे धीरे करके उन्हें बड़ी फिल्में भी मिलने लगी। तो चलिए फिलहाल हम पहुंचाते हैं आप तक फिल्म छोटी बहन से ये सुपरहिट गीत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये गीत आपने सुना फिल्म शर्त से और आवाज थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। आपको बता दें कि कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की। श्यामा कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही जिनमें बरसात की रात, आर पार, सावन भादो, दिल दिया दर्द लिया जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वहीं एक सहायक कलाकार के तौर पर भी वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही जिनमें तराना, सजा, पतंगा, गृहस्थी, शायर, शबनम, नाच, शर्त, सबाक, मिलन जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें जब श्यामा थोड़ी बड़ी हुई तो आईएस जौहर ने उन्हें अपनी फिल्म श्रीमती जी जो 1952 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में बतौर हीरोइन उन्हें पेश किया और इसमें हीरो थे नासिर खान। उसके बाद अगले साल 1953 में फिल्म आई लहरें और इस

में वे किशोर कुमार की नायिका बनी थी। बिमल रॉय की फिल्म माँ में काम करने के बाद तो श्यामा एक स्टार बन गई थी। उस साल उन्होंने लगभग 19 फिल्में साइन की थी। 1954 में रिलीज फिल्म आर पार में वे गुरुदत्त के साथ दिखाई दी थी। गुरुदत्त की हीरोइन में बनी थी और ये फिल्म उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई और इसके बाद तो श्यामा ने ये मानिए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए, जब हमने बात की है फिल्म आर पार की, तो इस फिल्म से एक गीत आप सभी तक पहुंच जाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्यामा की। अभिनेत्री श्यामा कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और उनका जो करियर था वो भी अच्छा खासा कई सालों तक चलता रहा। और सबसे ख़ास बात ये थी कि श्यामा के करियर में जो मील का पत्थर मानी जाती है वो फिल्म थी आर पार। और इस फिल्म के बाद तो श्यामा का जादू ऐसा चला कि 17 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके दीवानों की अच्छी खासी तादाद हो गई थी। और बस उसी दौरान की बात है कि कैमरामैन फली मिस्त्री और अभिनेत्री श्यामा एक दूसरे को चाहने लगे और फिर श्यामा ने उनसे शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए वे एक दूसरे के हो गए।

लेकिन खास बात ये रही कि श्यामा की शादी का उनके फिल्मी करियर पर कोई भी असर नहीं पड़ा और शादी के बाद भी श्यामा फिल्में करती रही। एक अभिनेत्री के रूप में सिक्का जमाने के बावजूद उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रोल भी किए। बहुत सी ऐसी फिल्में थीं जिनमें वे नजर आई, लेकिन चलिए पहले सुनते हैं एक गीत और गीत के बाद हमारा कलाकार बेमिसाल का सफर जारी रहेगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

নেতা ধ্রুমদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী সুখদা।

रिमवेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 12 तारीख व दिन है शुक्रवार। अब से लेकर रात 9:16 तक हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम निष्पादक श्री संघे बोम्पा, मोनपा मत घोषक श्री लुपसंग नोरबो, तकनीकी अभियंता श्री अंटू कुमार दास, हेमंता स्वर्गियारी और तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका टाशी छुटन। आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र आपसे थोड़ी देर में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: 21-9 in a one-sided quarter-final clash. The India Meteorological Department, IMD, has said a wet spell is likely to continue over northwest India till tomorrow, with the possibility of thunderstorms and gusty winds and hailstorms. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, parts of West Bengal, Bihar, some parts of Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के महानिदेशक

0: स्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार

0: राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24,00,000 रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करे। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना खतर और

0: होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्नाबॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। मीडियम वेव 157.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुन सकेंगे गांधी स्मृति और हिंदी भक्ति गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गांधी स्मृति से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार।

0: محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
1: गांधी स्मृति. देश की एकता पर बोलते हुए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है कि जब सभी धर्मों के धर्मावलंबी परस्पर आपसी सौहार्द के साथ रहने लगेंगे, उनके हृदय स्वच्छ और पवित्र हो जाएंगे और वे कभी आपस में किसी बात पर झगड़ेंगे नहीं, तभी देश की एकता सही अर्थों में सुदृढ़ होगी। तब स्वर कहीं बाहर नहीं, यही होगा हमारे पास। लीजिए बाबूजी की ही वाणी में सुनिए देश की एकता पर यह प्रवचन।
2: कवियों ने कहा है, मैंने कहीं यहां पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत के बाहर जो हुआ है वो तो हमेशा के लिए कहा है।

खूबसूरत चीज है उसको मैं जन्नत में जन्नत ऐसी आता हूँ देखी से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी ऐसी शरीफ मुसलमान बैठा शरीफ हिंदू बन शरीफ सिख सिख लोग सब वो सबके सब भाई भाई बन जाए तब तो मैं कहूंगा कि वही शेर तो है वो शेर सब लोगों से पर लगाया जाए तो मुझे भाई लगेगा भी लगेगा लेकिन वहां यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए दिल साफ हो जाए दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा ऊपर उसमें से तो पाकिस्तान ऊपर बोझक साल हो जाता है लेकिन अगर वो बदलता है और शक्ल बदले कि वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो जाए शैतानी रहता है खुला विरासता है ऐसा करें तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है जन्नत तो यहाँ है अरे लोगों आइए जन्नत में लेना है जन्म में देखना है कि इस नरासा में प्रवेश करो ऋषि पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है ऐसे ही हम है पाकिस्तान में हमारे भाई है हम उनके भाई है वो हमारे भाई हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो है नहीं चाहे उस रहा तो क्या न रहा तो क्या हमारा दिन एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना दोनों हुकूमत अलग अलग कहीं जाए तो भी क्या हुआ सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी अलग अलग रहे लेकिन दिन एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे उससे उसको क्या आपको क्या पड़े मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान की देहात है तो उस 60,000 देहात की हुकूमत बनी है समय उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है उसको बड़ा अच्छा है उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा अच्छा होगा सहज होगा और तब पीछे वो देहातों का काम को देने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से ऐसी वो खूबसूरत चीज है तो मुझको तो खेती की दे दी घोर में पी लेता और कोई तो कहे कि तो पीछा बिल्कुल बात में है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का वो आशा रहता है लेकिन मैं क्या करूं बना हूं इसे और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है पढ़ता नहीं था ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ आपको कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ मैं अखबारों को पढ़ता जाता नहीं था पढ़ता नहीं था अंग्रेजों को कहा आता था अंग्रेजों बड़ी मुसीबत थोड़ा पड़ता था और ऐसा गुजराती भरता जान देता था वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सकेगा उसको दिखाई पर कैसे पड़ेगा ऐसा अनजान आदमी तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब राजकोट में नहीं काठियावाड़ में नहीं सारा हिंदुस्तान

受了以下一般是一种是一种一种感染我一种感染都不信我们都要为阿人不信的时代有没有好또아까노공수고수를할때는사업적이시다할때는또그것이무비무역하고있는그이시민많이당그사이무화수라또아야그니까말고그예수와무역하고있는데그이시정은저우수가이저간이에요어저간이비성부되지우수는이화구에무역이하무화가아진짜후다मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो बुला हो गया ना मरने के किनारे पर बैठा लेकिन मेरा दिल नाचेगा और ये छोटा ये यहाँ लड़के लड़के है ना इस तरह से ये बुरा नाचेगा अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो गया हिंदू मुसलमान कोई आपस में लेते फिरते नहीं है और इस तरह से रहते हैं हाँ आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने मैंने आप क्या सुना था लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है तो बात तो सच्ची हो कहता है बुला मेरे ख्याल उससे क्या हुआ तो उसकी बात है ईशा करो मुसलमान माने हिंदू माने सिख माने पारसी माने ईसाई माने और सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे कभी हम अलग अलग थे हम सबका सुख अपने अपने घर में कायम बने अच्छे बने तो सब घर एक साथ चलते हैं एक किसी को दिखेगा नहीं तो मुसलमान ही तो पारसी है शरीफ आदमी है सकार जाएगा इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा आप नाचेंगे नचा नहीं करता वो तो जो उधर सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको नशा बना देगा और ऐसी दूर रहना बन रही है तो जिसमें किसी को कुछ दान ही नहीं देता है कहीं भी एक दर्जा क्या देता है और कोई पूछे कि आप लोग किससे लेते हैं तो कहीं तो हम तो किसी से नहीं लेते एक ईश्वर पड़ा है वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है हृदयाकाश में पड़ा है और ईशाकाश में पड़ा है उस ईश्वर से हम डरते हैं उसे किसी से नहीं डरते हैं अरे देखो ये पहाड़ जैसा पठान है इसी के उसी में डरते हैं मैं क्यों डर जाता हूँ तो कहीं कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं मैं तो ईश्वर से डरता हूँ डर के लड़के अगर डरते हैं ईश्वर से ही दूसरे को तो कह सकते हैं

अभी आप सुन रहे थे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी के विचार कार्यक्रम गांधी स्मृति में। इसी के साथ कार्यक्रम गांधी स्मृति यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम वंदना। इसी कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं उपासना मेहता की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उपासना मेहता की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे जिग्मी दोरजी और साथियों की आवाज में चंद लादाखी लोकगीत।

0: अभी आपने सुना जुगनी दर्जी और साथियों से चंद लादा की लोकगीत। इसी के साथ आज का विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे दर्जी खंड गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की छात्रा पेमा डोकर से अच्छे संस्कार विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मेरी बात। मैं कुमारी पेमा डोकर दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ। आज आप सबके समक्ष अच्छे व्यवहार यानी गुड मैनर्स के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनुष्य को सभ्य और सम्मानित बनाने में उसके गुण और संस्कार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा व्यवहार वही है जो हमें समाज में सम्मान दिलाता है और हमारे व्यक्तित्व को महान बनाता है। यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी आवश्यकता जीवन में हर पल, हर रिश्ते, हर स्थान पर होती है। अच्छे व्यवहार की शुरुआत हमारे घर से होती है। माता पिता को सम्मान देना, बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना, छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से रहना, यही हमारे संस्कारों की जड़ है। स्कूल में हम कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए, जी सर, जी मैडम जैसे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग सीखते हैं, जो हमें आदर देना और लेना सिखाते हैं। अच्छा व्यवहार सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दूसरों की भावना को समझना भी है। जब हम मीठे शब्द बोलते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए सम्मान और प्रेम जागता है। इसी कारण कहा गया है, वाणी में मधुरता हो तो रिश्ते अपने आप मीठे हो जाते हैं। हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर शिष्टाचार से साथ जीवन जिए। जैसे रास्ते में बुजुर्गों को सहारा देना, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखना, कतार में धक्का मुक्की न करना, किसी को चोट न पहुंचाना, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना, ये सब व्यवहार हमारे चरित्र का आईना होते हैं। आधुनिक समय में तकनीक ने लोगों को जोर भी दिया है और कहीं न कहीं दूर भी कर दिया है। ऐसे समय में मानवता, विनम्रता और आपसी प्रेम को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे अच्छे व्यवहार किसी का दिल बदल सकते हैं और अच्छी आदत अच्छे समाज की नींव रखती है। अगर हम सभी यह संकल्प ले कि हम सबके साथ सम्मान से पेश आएंगे, किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, समाज की भलाई में योगदान देंगे, तो हमारे देश भी और अधिक संस्कारित, सभ्य और आदर्शी बनकर उभरेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अच्छा व्यवहार इंसान की वह पहचान है जो शब्दों से पहले दिलों तक पहुंचती है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना दर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की छात्रा पेमा डोकर से अच्छे संस्कार विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।

0: कुर्सी?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडीज से। शब्द रचना है प्रशांत पांडे की व संगीत है राम संपत का।

अभी आपने सुना फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से गीत नेहा बसिन की आवाज में गीत करते इरशाद कामिनी व संगीता सोहेल सेन का। आप सुने कार्यक्रम नारी संगीत आकाशवाणी के तमाम केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में फिल्म गदर 2 से। शब्द रचना है सईद कादरी के व संगीत है मिथुन का।

फिल्म गदर 2 के संगीत के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त हुआ। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई

0: आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभी देओल और मारिया फर्नांडिस की आवाज में इस गीत को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने। वो संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बॉडीगार्ड से गीत ऐश किंग और क्लिंटन सरोजो की आवाज में गीतकार थे नीलेश मिश्रा व संगीत था प्रीतम का। आप समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म आर राजकुमार से। नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अभी आपने सुना फिल्म RRR से गीत विशाल मिश्रा और राहुल सिप्लीगुंज की आवाज में, गीतकार थे रिया मुखर्जी व संगीता MM करीम का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द फिल्म ए दिल है मुश्किल से। अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज में इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पाठशाला का एक गीत, सलीम मर्चेंट की आवाज में गीत करते हनीफ शेख व संगीत हनीफ शेख का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे प्रिया पंचाल द्वारा शुद्धबद्ध फिल्म एंटरटेनमेंट से आतिफ असलम और शालमली खोलगड़े की आवाज में। इस गीत को संगीत से संवारा है सचिन जिगर ने।

फिल्म एंटरटेनमेंट के संगीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ख्याल। राग है जय जयवंती। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 4:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार व 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए। राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश से तायता गग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राजधानी ईटानगर में एक्सपोज फेलस्टेशन सेल स्थापित करने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। नामसाई जिला प्रशासन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तथा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सहयोग से नामसाई में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों के ले जा रहे तेल टैंकरों पर हमले की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जलपास राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तायता गग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वर्षों से राज्य की समर्पित सेवा करने के बाद अब वे राष्ट्र स्तर पर राज्य के लोगों की आशाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य विभाग ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कोलकाता के साथ ईटानगर में एक निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेल EFC स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। EFC की स्थापना राज्य सरकार के व्यापार को बढ़ावा देने, व्यवसाय सुगमता में सुधार लाने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा और बाजार एकीकरण को मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्थन देने के प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं स्थानीय व्यवसायियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नामसाई जिला प्रशासन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम तथा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क के सहयोग से नामसाई में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिले भर से उभरते उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, विद्यार्थियों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किए जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद

0: छात्रों विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ओएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने ओमान में तट पर पलाव के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा है कि गुतरस लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित है। वो आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि ये स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमा 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी है। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है वो प्रेरणादायक है। फीफा विश्व कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मेक्सिको में जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मेक्सिको के साथ होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मेक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से पराजित किया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे चेन यूसू को 21-6, 21-9 से हराया था। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से यह प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के निस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और गरज के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की आशंका है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, कुरुंकुमे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, नामसाई, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक विक्रेता केंद्रों से ही लेना चाहिए। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बुलेटिन नमस्कार।
1: मीडियम एपकिलो हर्स के चिन्ह खाले थी मीटर के ठीक निंग खबलचिनिस निंग था नहीं गा संगीना से उस नोटिंग खंग तमाम सितंबर संगीना द नब्दी छुसे लेंगे होनी दा लोंठिंग खंग तमाम तेज नब्दुक मन पाक लेरिम बनांग कोसो दो लेरिम सन खन लंगे सांग मशल नदाचे लोजों नर्बुसी समझी तेजी दिलेंगे शितो संगीना देश चिलो नितों खलक रोलोक चिंदटो पक्तरिक चिंग नहीं बै गेलो नितों गेने खने चिक सुम रबने मेतालोक बंदशी पक निस्निस रेजा पासा यंबर संगीना दा नम्यों तो मन पक लेरिम दांप नमथर लेरिम चित कोसो दो संगीना देश लेरिमा जैसे चंबो शिवलासी जेनांगो चंजो चंबो चोको तेंजन गिरमेर मचेसी मंचित का चुरिया देशे नांगो दांसन में चिकमर देश मुथी ये सनासा
2: लुटंग तो बुई ना नासा चित नो या या इचे मिशी ये सोच तो जून गर जमल लेंगा चित न्यावा योर दे थों है ना न्यावा दुजाला थों जमल नां यें बर तो मे दुजाना से न्यावा थों न्यावा थों या बर तो निशे न्यावा मत इना निशे सुध नी नी यो बुदें दमा दर रही में वरे ला सिंगना सुध नी वही ना बिना ने नाजा चे मुनु शों में देश नो जमल लेंगा दादा केगब योर ते का यूटिनेशिया ये ना बहुत से खेम ने था तो नाजा दुजा ला कोमा ला उदन के मन गांग तो मुझे ची ची लंगा मन गांग सु तो मिशिन का सु या तब यार ताकि शंजो के जवाला तो मनोबर तो मनोबर भी सु ही ना तो तादो यार भी नाम ही यंबर पंचे में बिशर को सिंह ना मन गांग रूपी को सुधी तादो यार को सुधी वरे ला इचिक से तो चिक बुजना से ने पेपर का साइन या या ना यूरोनिशिया या तो ना क्लेम बढ़ जाना ताच मिशिन जो थोर कोई ना शिगे में वाले बुजे मनोशोई में तो डिबेरियम दा केखब मामू थे डिबेरी आदम उद याना कर दो वा माया ना कर दो वा या छो वा माछो वा बाग थी सिंह ना बिना सुगु ना बिना शा नासा लोगो का हाचिर गोसु नासा थी इजिक से जिसे सो ना क्लेम नहीं है साइन या गिन ना बाग थे तो धंधा जे शुजु जो सो सीम ना नाजा से हन में थे वो या शिशु ये ना नाजा जे मनुष्य जो थे नौ में अर्श निवा का उदन मनो नियम था शिजु ये मनो बिना ले जे मिशन था मर नाजा जे मांशु मांशु मांशु मांशु गए सुगुसुद या मर जम्बल लिंगा ये ना तथा नाखपो योर दे पे मनो आदो दे प्लांट ही पे मनो आदो दे तबे तो को योर मनो आदो दे नाखपो या वाई ना नगर चे कोमिया कैसी ने उदो सुबु उन आदो या नाखपो से को जुला थी नो में उदे न्यावा का उदे ने मनो आनी कुंडा या में सुगु यूने नो दाजी लू लसे जो ना क्योबा मिसे मैं बरवे ता सेम का क्योबा जे मैं बरे उदो शौंग में ये ता ना मिले रंबे चे था बर ये ता तक ता दे या ना क्लीन निशें दे ता उद माया उ सुगु से ता ये ता दा उदे निको वर उनी ये ता मर नियो का उन सर जो बा गो मो को या को ये ने के बर दे मनु शौंग में ला सेम डंग जो ला दे में से सेम डंग ये ना सेम ने आ कहने को उदन जोबा रही मिशो ने दा हाचे दोस उदन जोबा रही मिशो ने दा उदमा दे आदम दा शिंदो निये का पेंबेसा जिशिक तर्दे निये जुरने दा निशे दा देंशन दो छे यान्यावा देर्थे नास दा उदमा जिना मद्रा सर्वराइम शिंदो निये का पेंबेसा शिंदो निये का वान्यना दंजो मिली रुम्बे चेशा तब्ये दमरे दा दंजो मिली रुम्बे चे थावो उदन दे पेंबेसा निये ना मेशन ना ना जा पेंदो जो रांशा पेंदो या जो उदन दे साशा ओ दरंगी लुबुशा निये दम दा चिशिक तर्दे चिशिक तर्दे निजुर ने ना तेवांग ने ना मिलु थब चे तंगर तेवांग ने ना रांस उदन द कव माया वाया या लॉटरी थब वंग तो दी मिन्य हम दा ओरे ला लॉटरी छे सो ना रूप ना कामु शिने में लॉटरी थी ना थब जो मन में या मिथी ने थब राय में गए शिने ने इजिक लॉटरी जब जगे देश ने रूप भालम दे पोत नगरी ने रूप भालम दे पोत या शुक से मुनु ना कामु मुनु शों ओरे ला मुनु से जो तब मुनु शों लॉटरी ता लॉटरी ने हो चे थब जो आने ना ता थब सिब चम चे कृषि थप जो लोग ने सुगंध से जरूर देखा ना मेरे मिली ने वो जो ना लोटरी थप बंगो तो दी मिल जाऊँ ता देवांग दानिशे दान देशीन दोस ता तदा मिली रूम से उतना तो ता दानिशे दान ये ना रांशे समलोटन जो निवेचे नो वाले शरब शरब नंबर दबाते नो विस्टम नंबर दबाते नो इचिक दुगा लगा तदा माया हो या शुभ जिन्या के जो रहना दे तदा के जो दे चुनी हुई ना नहीं होंदा मैं ये मंबर चेबाशन दाला दिरसम में दोस मैं ये मंबर चेबा ना ना नंबर दबाते था रिंगा ने वो तो डूब जाना था चितर डूल सुम्ये था रिंगा ने वो डूब शिन्ये मत है ना तो मुरी मोटे तो सोंग हो सही ना तो मुरी सोंगे ना से बिना

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। जरोखा में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर

कार्यक्रम जरूर में हम आपको अवगत करवाते हैं। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से जरूर में पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम शेदन लेरिम, जिसमें आप सुन सकेंगे शिव बस्ती के अम्मा लोपसंग छुटन और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोइम ऑफ द डे, जिसमें आप सुन सकेंगे मंजुल विद्या निकेतन स्कूल तवांग की छात्रा तेंजन पेमा से एक कविता। कविता का शीर्षक होगा घर। शाम 7:11 पर कार्यक्रम दर्पण, जिसमें आप सुन सकेंगे गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शब्द चंद हिंदी फिल्मी गीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म यस बॉस से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गीत, फिल्म एक दीवाना था से लियोन डिसूजा और सुजैन डी मेलो की आवाज में गीत, फिल्म ओम शांति ओम से शान, उदित नारायण, श्रेय घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना की आवाज में गीत, फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से डी सिरेजो, क्लिंटन सिरेजो और लॉय मेंडोंसा की आवाज में गीत, फिल्म नमस्ते लंदन से राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत, फिल्म कभी अलविदा ना कहना से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गीत, और फिल्म आयशा से निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी की आवाज में गीत। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर आप सुन सकेंगे एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामी तराने के अंतर्गत, फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो से सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज में। आज रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल यानी 13 जून 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 अंग्रेजी समाचार के साथ, 2:15 पर हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुन सकेंगे पंडित गोपाल शर्मा और पंडित सुखदेव कुमार की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। कल दोपहर 3:00 विभिन्न प्रांत के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, जिसमें आप आनंद ले सकेंगे चंद मणिपुरी आधुनिक गीत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें आप सुन सकेंगे दोरजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग की 5th सेमेस्टर की छात्रा तेंजन सोमो से युवा समाज में कैसे योगदान दे सकते हैं विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम नारी संगीत, जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म पार्टनर्स से सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और सुजी क्यू की आवाज में गीत, फिल्म गदर 2 से अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में गीत, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माहिस से मोहम्मद फैज की आवाज में गीत, और फिल्म सलामे इश्क से महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम की आवाज में गीत। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम

गीत मंजरी जिसमें आप सुन सकेंगे फिल्म जब हैरी मेट सेजल से अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म सिम्बा से राहत फतेह अली खान, आशीष कौर और तनिष्क बागची की आवाज में गीत, फिल्म सुल्तान से राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत, फिल्म क्वीन से अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह की आवाज में गीत, फिल्म पैडी से मोहित चौहान की आवाज में गीत, फिल्म दो पत्ती से परंपरा टंडन की आवाज में गीत, फिल्म श्रीकांत से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में गीत और फिल्म हसीन दिलरुबा से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। मोनपा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम नामथार कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री लुपसंग नोरबू से, 5:35 पर केसंग और सोनम छुकी से मोनपा लोकगीत और शाम 6:20 पर कार्यक्रम शेदन लेरिम जिसमें आप सुन सकेंगे शेरो बस्ती के अमर रिंचन सांगमो और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, 7:25 पर कार्यक्रम साज और आवाज जिसमें कार्यक्रम का पहला साज आप सुन सकेंगे फिल्म कश्मीर की कली से, उसी साज पर आप सुन सकेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत और कार्यक्रम की अगली धुन आप सुन सकेंगे फिल्म सिलसिला है प्यार का से, उसी धुन पर आप सुन सकेंगे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में एक गीत। कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी दिल्ली ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, 7:50 पर रीजनल न्यूज, 7:55 पर एक देशभक्ति गीत कार्यक्रम क्वामे तराने के अंतर्गत फिल्म राजी से अरिजीत सिंह की आवाज में। कल रात्रि 8:00 आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि ठीक 9:00 न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे मनपा में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमा

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology

इसी के साथ कार्यक्रम पॉइंट ऑफ द डे यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शब्द चंद हिंदी फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म यस बॉस से। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

अभी आपने सुना फिल्म एक दीवाना था से गीत लियोन डिसूजा और सुजैन डीमिलो की आवाज में, गीतकार थे जावेद अख्तर व संगीता ए आर रहमान का। श्रोताओं, आप सुने कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शब्द चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान और लॉय ने।

अभी आपने सुना फिल्म आयशा से गीत निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी की आवाज में गीतकार थे जावेद अख्तर व संगीत था अमित त्रिवेदी का। आप सुन रहे कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शतपथ चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म नमस्ते लंदन से। गीत को संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आप सुने कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शब्द चंद हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा से डी श्रेजो, क्लिंटन श्रेजो और लॉय मेंडेंसा की आवाज में। गीत को संगीत से संवारा है शंकर एहसान और लॉय ने।

फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा के सिगी के साथ कार्यक्रम दर्पण यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र आपसे थोड़ी देर में यानी 7:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी टनिवर समय प्रसारित प्रादेशिक समाचार व 7:50 पर रीजनल न्यूज़।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड सरकारों के साथ कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा तथा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह समझौता एक ऐतिहासिक क्षण है और इससे देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 15 जून को शिलांग का दौरा करेंगे, जहां वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास और संपर्क व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री गडकरी शिलांग स्थित लावेती परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एवं प्रदर्शनी के दौरान सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा भी लेंगे। ये समिट अवसंरचना विकास, निवेश के अवसरों और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है, जिसमें देश भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, निवेशक तथा अन्य हितधारक शामिल होंगे। चांगलांग जिले में 92 चांगलांग साउथ एसटी विधानसभा क्षेत्र के 53 चांगलांग नॉर्थ एसटी विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ के लिए एसआईआर 2026 के तृतीय चरण का व्यापक अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। एलएलएमटी कम ईआरओ रोसलिंग पर्तन एवं ईआरओ गांजार दौके के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण सत्र में बीएलओ को एसआईआर 2026 की प्रक्रियाओं संबंधी विस्तृत मार्गदर्शन तथा बीएलओ ऐप के व्यवहारिक उपयोग का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ईटानगर जिला इकाई ने आज ईटानगर में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य

0: में जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विधायक तेची कासा ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की ऐतिहासिक विकास उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने अभूतपूर्व अवसंरचना विकास और जन कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन प्रयासों ने देश के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। अनियमितताओं की जांच तथा शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के अनुपालन की समीक्षा की गई। जांच में 8 दुकानें बिना वैध लाइसेंस के पाई गई, जबकि 3 दुकानों में लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी पाई गई। बिना वैध लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों में कुल 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन कार्रवाई के तहत विद्यालय परिसर के निकट स्थित उल्लंघनकारी दुकानों से प्रदर्शित तंबाकू जब्त किए गए। इसके साथ ही निरीक्षण दल ने स्थानीय दुकानदारों के लिए मौके पर ही जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम का भी आयोजन किया। नियमों का उल्लंघन करने वालों को व्यापार एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने अथवा रिन्यू करने की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की गई। दापोरिजो टाउनशिप में प्रभावी कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने आज दापोरिजो टाउनशिप के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीति के निर्माण हेतु TCS हेरिटेज भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों के प्रमुख, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों, बाजार संघों, सुरक्षा बलों, सामाजिक संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। परामर्श प्रक्रिया के दौरान स्थानीय चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान, व्यवहारिक अपशिष्ट प्रबंधन योजना का विकास, विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां या निर्धारण तथा स्वच्छ भविष्य के लिए सामूहिक योजना निर्माण पर विशेष जोर दिया गया। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगो ने आज इसी कार्यालय तवांग के सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदार वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जिला प्रशासन को अपने अपने क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट उपायों के कड़ाई से पालन करने के अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी है कि 2 लीटर से कम क्षमता वाली बोतल बंद पानी की बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता की रक्षा करना है। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 15 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, पाके किसांग, पपुमपारे, कुरुंग कुमे, क्रादादी, अपर सुबनसिरी, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, नामसाई, तिराप और लंगनी के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani, Itanagar, the news read by Priya Badu. In a significant development, the center has signed a historic tripartite memorandum of understanding with the governments of Assam and Nagaland for the exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nifyu Ryo. Speaking on the occasion, HM Amit Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and that it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country. He said the MOU has successfully removed a major hurdle in realizing Prime Minister Narendra Modi's vision of a prosperous and developed Northeast. Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari will visit Shillong on June 15 to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the northeastern region. The minister will attend the CEO's roundtable during the Northeast India Infrastructure Summit and exhibition at the Lariti Performing Arts Center, Shillong. The summit serves as a premier platform for discussions on infrastructure development, investment opportunities and regional growth, bringing together policymakers, industry leaders, investors and other stakeholders from across the country. A comprehensive final training program for booth level officers of 52 Changlang South STAC and 53rd Changlang North STAC was successfully conducted for phase 3 of SIR 2026 at Changlang. Jointly led by NLMT cum ERO Rosalind Pertin and ERO Gamjar Doki, the session provided BLOs with in-depth guidance on SIR 2026 procedures and practical

फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो के संगीत के साथ देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने यहीं पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म कोई मिल गया से उदित नारायण और चित्रा की आवाज में। शब्द रचना है इब्राहिम अश्की व संगीत है राजेश रोशन का। इस गीत की हमें फरमाइश की है पैगाम हौसा पेपेमा टची सिटी में चिंतों चिन दर्जी और तेंजुन सोमू।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म सूरज से मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिए इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत की हमें फरमाइश की है मंडलिंग तवंग से। आप है तंजन डोलकर सरगिरिपा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म बाबी से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण के, वसंगीत है चित्रगुप्त का। इस गीत की हमें फरमाइश की है सुनबिल कुदाली, आसाम से आप है हितेंद्र दास।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन सकेंगे फिल्म चिराग से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत गार है मजरू सुल्तानपुरी व संगीत है मदन मोहन का। इस गीत की हमें फरमाइश किए है जलालाबाद वेस्ट से आप है सूरज, गगनेजा पूनम, गगनेजा विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

श्रोताओं आप सुनिए, आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुन सकेंगे फिल्म नाच उठा संसार से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी के, वसंत गीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की हमने फरमाइश की है बस्ती नथाना पंजाब से आप है हरजिंदर चिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता।

श्रोताओं, अभी आप आने ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033-9149-08। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादवरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीनियों, कुछ और नगमों के साथ।

ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में यानी 8:30 मिनट पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन। 8:45 मिनट पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट 9।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर अपडेट के साथ और हर मैच के ताजा हाल के साथ, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल के मैदान की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के दिन भर के मुख्य समाचारों पर। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 मेक्सिको में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहले मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका आमने सामने। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के मेगा कार्निवल फीफा विश्व कप के साथ, जिसका आगाज कल मेक्सिको में शानदार रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की।
1: विश्व के सबसे बड़े खेल फुटबॉल के सबसे बड़े कार्निवल फीफा विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस पहले ही दिन इस विश्व कप के मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट के लिए उत्साहित नजर आए। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में बीती रात मेक्सिको में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है। एस्टेका स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने मेक्सिको का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला। मुकाबले की शुरुआत से ही मेक्सिको ने गेंद पर नियंत्रण रखा और लगातार दक्षिण अफ्रीका के डिफेंस पर दबाव बनाया। फीफा विश्व कप 2026 और मैच का पहला गोल गिव नो नेस ने किया। हाफ टाइम तक मेक्सिको 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका लगा। टीम के खिलाड़ी याया सिथोल ने गोल की तरफ बढ़ रहे मेक्सिको के ब्रायन गुटिरेज को रोकने के चक्कर में उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद रेफरी ने तुरंत उन्हें रेड कार्ड थमा दिया। गुटिरेज को रेड कार्ड मिलने के बाद अफ्रीका को दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ी

के साथ खेलना पड़ा। इसका फायदा उठाते हुए अनुभवी स्ट्राइकर राहुल जिमेनेज ने शानदार गोल दाग कर मेजबान टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया और टीम की जीत लगभग तय कर दी। मेहमान टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। टीम के खिलाड़ी थेम्बा जवाने को हिंसक व्यवहार के कारण रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच के अंतिम क्षणों में मेक्सिको को भी झटका लगा जब डिफेंडर सीजर मोंटेस को एक लापरवाही चुनौती के लिए रेड कार्ड दिया गया। हालांकि इस फैसले का मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और मेक्सिको की टीम मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करने में सफल रही। वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से रोमांचक जीत दर्ज की। रोमांच से भरपूर मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने दूसरे हाफ में 1-0 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से ही कोरिया और चेकिया की टीम को गोल करने के कई मौके मिले लेकिन दोनों ही टीमें इसे बुनाने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ की शुरुआत से ही चेकिया ने आक्रामक खेल दिखाया और टीम को मैच के 59वें मिनट में लाडिस्लाव क्रेजकी ने हेडर के जरिए शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

0: इसके बाद दक्षिण कोरिया ने शानदार वापसी करते हुए 67वें मिनट में हांग इन ब्योम के गोल की मदद से स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। ओ ह्योन ग्यू ने 80वें मिनट में गोल करके दक्षिण कोरिया को मुकाबले में बढ़त दिला दी। इसके बाद कोरिया ने चेकिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और टीम विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ करने में सफल रही। विश्व कप में आज सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो फुटबॉल के सबसे बड़े मेगा कार्निवल का आगाज हो चुका है और ऐसा ही एक मंच सजने को तैयार है क्रिकेट का इंग्लैंड और वेल्स में, जहां आज से आईसीसी टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज होने जा रहा है। इस बार टी20 विश्व कप में 12 टीमें भाग लेंगी, जो इस खिताब के लिए अगले 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी और 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर यह फाइनल होगा कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का नया चैंपियन कौन बनने जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में विमेंस इन ब्लू यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला टी20 विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। सुनिए विश्व कप पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के मुकाबले के साथ ही आज से टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज हो जाएगा। पहली बार महिला टी20 विश्व कप में सबसे अधिक 12 टीम भाग ले रही है। 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट के इतिहास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने 6 बार ये खिताब जीता है। इंग्लैंड 2009 में, वेस्टइंडीज 2016 में और मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम 2024 में 1-1 बार ट्रॉफी उठा चुकी है। 2025 में अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम इस टी20 विश्व कप के प्रबल दावेदारों में शामिल है। अगर भारत को ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो टीम अनुभवी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही है, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान है। इनके अलावा शिफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, रुचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव भी टीम का हिस्सा है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को एजबिस्टन में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा और इस मैच को लेकर जितना उत्साह दर्शकों में है उतना ही उत्साह टीमों में भी है। इसके बारे में खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है ना, हमने कभी किसी और मैच में एक्सपीरियंस नहीं करा। इवन दो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हो और सेमीज भी खेले हो, नेवर फेल्ट दैट। बट आई थिंक क्योंकि शायद बचपन से वो एक एक्सपीरियंस के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट एट द सेम टाइम वो उतना ही स्पेशल मैच होता है, उसको जीतने के बाद उतना ही अच्छा फील होता है, उतना ही रिलैक्स फील होता है।
2: उप कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच को लेकर क्या कहा, ये भी सुनते हैं।
3: आई हैवंट रियली फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या अगेन टू किक स्टार्ट योर वर्ल्ड कप कैंपेन विद द पाकिस्तान गेम इज ऑलवेज गुड, क्राउड फर्स्ट हैंड इन द फर्स्ट गेम, सो दैट विल मोर देन ऑफ योर बैक, आई जस्ट फील इट विल जस्ट गेट मेक एवरीवन यूज्ड टू द क्राउड।
2: इसके बाद भारत 17 जून को नीदरलैंड, 21 जून को दक्षिण अफ्रीका, 25 जून को बांग्लादेश और अंतिम ग्रुप मैच में 28 जून को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैनल।

0: और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होने जा रही है। जानते हैं 2027 विश्व कप की तैयारियों की शुरुआत माने जाने वाली सीरीज से भारत को क्या उम्मीदें हैं।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन की रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी में टीम अब नीली जर्सी में भी अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। 2027 विश्व कप की तैयारी का आगाज मानी जा रही यह सीरीज भारत को कई युवा खिलाड़ियों को आजमाने के नजरिए से बेहद अहम है। भारतीय टीम की बात की जाए तो कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिनको हिटमैन रोहित शर्मा का बखूबी साथ मिल सकता है। विराट कोहली के चोटिल होने के बाद टीम में आए यशस्वी जायसवाल के पास भी खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। विकेट कीपर के रूप में टीम के पास केएल राहुल और ईशान किशन का विकल्प है। निचले मध्य क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर टीम को बल्लेबाजी में गहराई देंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम के पास स्पिन अटैक में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्ष दुबे का विकल्प है, जबकि टीम की पेस बैटरी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार जैसे युवा नाम है। तो ये दोनों टीमों में अब तक 4 बार आमने सामने हुई है। इनमें 3 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 मुकाबला टाई रहा है। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 जून को लखनऊ और अंतिम मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है। यहां से शुभमन गिल की मेंस इन ब्लू की नजर इस घरेलू श्रृंखला में जीत दर्ज कर अपनी तैयारियों को एक सकारात्मक शुरुआत देने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
2: It's been special and I've loved it. It's a team that I love and it's so dear to my heart. You know, it's been such a massive part of my life and team sports pretty special thing, you know, you get a bond with these people around you for such a long period of time and have some really amazing experiences, so they're the sorts of thoughts that come back. The achievements, the good days, the tough days that toughen you up and make you a bit stronger, that's the highlight for me.
3: 35 साल के विलियमसन ने 2010 में टेस्ट और वनडे में और 2011 में T20 में डेब्यू किया था। तीनों फॉर्मेट मिलाकर 378 मैचों की 452 पारियों में 48 शतक और 103 अर्धशतक की मदद से विलियमसन ने 19,346 रन बनाए। विलियमसन ने 110 टेस्ट की 195 पारियों में 33 शतक और 38 अर्धशतक लगाते हुए 9,515 रन बनाए। 175 वनडे की 167 पारियों में 15 शतक और 47 अर्धशतक लगाते हुए 7,256 रन बनाए। इसके अलावा 93 T20 की 90 पारियों में 18 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 2,575 रन बनाए हैं। फॉर्मेट के हिसाब से विलियमसन टेस्ट में पहले, T20 में दूसरे और वनडे में न्यूजीलैंड के चौथे सबसे सफल बल्लेबाज हैं। वो 2015 में ICC के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और 2019 में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर रहे। विलियमसन न्यूजीलैंड के सफलतम कप्तान भी रहे हैं। दाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 40 टेस्ट, 91 वनडे और 75 T20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में कीवी टीम ने 2019 वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था। विलियमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कीवी टीम उनकी कप्तानी में 2021 T20 विश्व कप का फाइनल भी खेल चुकी है। वहीं विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर 2021 टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 2025 में T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद आज पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की विलियमसन की घोषणा के साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: जाने माने निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। सुनते हैं निशानेबाजी के इस गोल्डन बॉय पर हमारी ये रिपोर्ट।
4: 28 जून 1976 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मे जसपाल राणा को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि थी। पिता नारायण राणा सेना के पूर्व अधिकारी थे और वे ही जसपाल के पहले कोच बने। 1988 में महज 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसके बाद 1994 में जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राणा के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। जसपाल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल नहीं हुए, लेकिन

0: राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया और कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक शामिल है। 2002 के मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 6 पदक अपने नाम किए थे। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 590 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल करने के बाद जसपाल राणा ने कोच के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने अनेक युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षित किया और भारतीय निशानेबाजी की नई पीढ़ी को निखारा। उनकी देखरेख में मनु भाकर ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद अपने कोच को लेकर क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
1: In 2022 also, I was in the team, I was doing good, but I was not happy with my sport, I was not happy in shooting. So I think he was the one to make me have faith in myself again. I would say that he makes me really happy in my sport and I really enjoy shooting again after like 2 years or so.
0: जसपाल राणा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और कोचिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत सरकार तथा खेल जगत की तमाम हस्तियों ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका निधन खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है और भारतीय निशानेबाजी में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
2: और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात

0: दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, CCTV और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का

0: कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में

0: का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons US Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over US strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: Union Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route. He also emphasized for ensuring adequate arrangements for all essential services.

0: Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says, government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित न्यूज एट 9. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय रात के 9:15 हुए हैं. अब आप सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में. कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, 7:32 पर कार्यक्रम साज और आवाज और रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील. तो यदि हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण. हम आपकी सेवा में कल फिर हाजिर होंगे दोपहर 2 बजे. तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्री अंटू कुमार दास, माफ कीजिएगा, श्री संगे बोम्पा, तकनीकी अभियंता श्री अंटू कुमार दास, हिमंता स्वर्गियारी और तानिंग तको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमोल कुमार दास और स्टूडियो में उपस्थित अन्य सहकर्मियों के साथ आपकी उद्घोषिका टाशी छोटरंगू दीजिए इजाजत. शुभरात्रि. जय हिंद.